Yat e hade in tsangi kwa de yang to public service announcement wal yahike e de yat a hachin sago de yati ba chena ho de shta sa to kwa pa hachin to go ke ya a yu go hot an kha chena ho ya da te sa atal sikis sik e ne re a kon trop ye je hon da in ko e a chena ta to ye hin da ja sa jo sa dan sa a sa dan so hin de di da sik jo e on ye kiri pu ए यति नजोने तो अच्छने गेंद निक आस तो जो कहो यो दे स्टूड इंटे अकों दे ए यति अपात ए होलों को आउट ए जोगाने अकों दे शिंग को ये को ना ए होट आउट दे ये नी तो आ व अच्छने तो ये ये दे ये जी तो होट आ ये अनाउंस डाला अकों दे विजिलेंट पेरेंट जोन हित दे ने तो एट ओपे इल ने तो दोले आदत ए या तो होट आ बिसिल दा दोले बा अहुलिया दोले ए या जो हने एल्टो सुपरविजन ए तो नील दाने खाला अच्छने ए या दी दे खुदे चनील ए तो नज़ंदा अजनशी तो लां ए थोपी दंते दी ए तो अच्छने आसा ए बी होट आस दाव तो संदा ला खाला थोपिसन तो नहीं के ए या चकिन शो अती आदो इन दा तो हाशे यू इच आओ अती दा drowning is swift and silent जो दाने Deep in Nina, it are quite

आज श्री आबद से दे दिन थे एक और रेस्क्यू एफर्ट्स के या आज रानी को ए या चता हजा तो अचल छो या दिल दान